भई किंकनी सबद चरत काल खेल पाए जी। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके, इस बम जान जान धस ही चारे जी। सत साच सिर निराल आद पुरख सदा तू ही, सत साच सिर निराल

जैसे अठ सठ तीर्थ परश किए जुग चार चढ़े हो कैलाश रे हो, जैसे अठ सठ तीर्थ परश किए जुग चार चढ़े हो कैलाश रे हो, जैसे कोट जन्म तप ऊर्ध्वमुखी बसंतर में तन दाहे दियो, जैसे लाख बार कुरुक्षेत्र में अश्वमेध जग अभंग ठयो, हुन अमृत नाम विशेष इति हुन अमृत नाम

गुर सिख है, गुर सिखों गुर सिख है, पीर पीरों कोई शब्द सुरत चेला गुरु परमेश्वर सोई। दर्शन दृष्ट ध्यान तार गुर मूर

वाहेगुरु गुर मंत्र है जप हूं मैं खोई नमस्कार गुरुदेव को सत नाम जिस मंत्र सुनाया पव जल विच्चों कढ के मुक्त पदार्थ माए समाया पव जल विच्चों कढ के ए मुक्त पदार्थ माए समाया।

जन्म मरण विच दुख सबाया जम दंड सिरों ना उतरे साकत दुर्जन जन्म गवाया चरण गहे गुरुदेव के सत शब्द दे मुक्त कराया पाओ भगत गुरपुरब कर पाओ भगत गुरपुरब कर नाम दान इशनान दृढ़ाया ओ जे

सेवक के भरपूर जुग जुग वह गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभु सदा सलामत।

छा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा। छा मत देव दयाल प्रभ सज्जन तू है सैन तू, मैं तुझ ऊपर बहुमानिया। जा तू अंदर ता सुखे तू निमानी मानिया, जे

तौ दीवाना जानी जा पै दीवाना होए असी ते उन्नू दीवाना आखदे आ जेड़ा रब दे डर विच रब दा मन विच डर रखे रब दे पै विच जेड़ा रहिंदा ओ दीवाना है। अते नाल के आ जेड़ा एकाकार कमाए एक परमेश्वर दे हुक्म विच रवे परमेश्वर दुख देवे भावे सुख देवे जेड़ा उस परमेश्वर दी बंदगी करदा है साहब जी कहंदे हन असल विच ओ दीवाना है। ते नाले के हुक्म पछाणे खसम का खसम उस अल्लाह वाहिगुरु राम नू के कि जेड़ा अपने खसम दा परमेश्वर दा हुक्म पछाणदा है हुक्म मनदा है अपनी सियानप नहीं वरतदा असल विच ओ परमेश्वर दा दीवाना है। ते नाल ए भी कहा तौ दीवाना जानी जा साहिब धरे पिया ओ दीवाना है जेड़ा अपने मालक नाल प्यार करदा है मंदा जाने आप को आवर भला संसार जेड़ा अपने आप नू मंदा समझे संसार नू चंगा समझे असल विच ओ दीवाना है। अक्सर देखदे आ लोक आप ते औगणा दे परे हन अपने औगण लुकांदे हन ते दूसरियां दी बुराई करदे हन पर सतगुरु जी कहंदे हन अपनियां बुराइयां दुनिया तू लुको सकदा है पर परमेश्वर तू नहीं उस वाहेगुरु अल्लाह तू नहीं क्योंकि ओ सब कुछ जानदा है। धन गुरु नानक साहब जिन्हां कदी किसे नू माड़ा नहीं किया। एक नगर विच गए उस नगर दे लोकां ने धन गुरु नानक साहब नू आदर नहीं दिता सगा पत्थर मारे ते धन गुरु नानक साहब कहन लगे उन्हां लोकां वल देख के वसदे रहो। फिर दूसरे नगर गए उत्थे दे लोकां ने बड़ा आदर मान कीता बड़ी सेवा कीती ते धन गुरु नानक साहब ने कहा तुसी उजड़ जाओ। ता सेवक ने पूछया महाराज जिन्हां पत्थर मारे उन्हां नूं कहा वसदे रहो ते जिन्हां ने सेवा कीती उन्हां नूं कहा उजड़ जाओ ये क्यों कहा। धन गुरु नानक साहब कहन लगे भाई जिन्हां पत्थर मारे जिन्हां दे मन विच बुराई है जेड़े नेकी नहीं करदे असा उन्हां नूं कहा वसदे रहो इत्थे ही रहो क्यों कि जे किधरे होर जावोगे उत्थे भी बुराई फैलावोगे ते जिन्हां ने की कीती उन्हां नूं इस वास्ते कहा उजड़ जाओ भाव कि होर जगह जाके वसो तुसी नेकियां करदे हो तां कि तुहाडे वल देख के दूसरे लोक भी नेकियां करन। पत्थर मारन वालियां नूं बुरा नहीं कहा सगा सतगुरां ने कहा ए लोक बुराई करदे हन इन्हां दी मत इतनी है ते जे धन गुरु नानक साहब नूं पुछिए महाराज तुहानूं लोक दीवाना कह रहे हन मस्ताना कह रहे हन ते साहब जी कहंदे हन भाई सचमुच मैं दीवाना हां

तुम्हारे देखे कि तेरा है तन मन धन। ए मेरे वाहिगुरु कृपा कर कोई तेरे दर्शना दी झलक इस हिरदे विच पै जाए।

तू मेरे काम लग जा मैं तेरे काम लग जाना मैनू तू अपना काम दे दे ते मेरा काम तू ले संसार जैसा चल जाता एक दूसरे दे काम आना जिस काम की जिनी जिनी समर्था हो बड़े पुराने समयां तो बंदा काम का लैण देण करता रहे जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता जेड़ा कर सकता है उन्हूं जाके बेनती करा तू ये कर दे इहदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस एक दूजे दे काम आ सकी संसार किसी ऐसा वरते है पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा किया है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मुंह भी वेखना पिया हो महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउण दी एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउणी है तू वाहू नाल पा के दे मालिक तू जो चाहे कर सकना है तेरी समर्था महान है कर्ता पुरख जो है सब कुछ कर सकना ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता मैं तो कुछ भी नहीं हो सकता जब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा अरदास तो हो सकती है और सच्ची गल जानना अरदास च खड़े हो जाना ही रब का काम है ओदे काम लगन का मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे में और जिस वेले साडे हथ जुड़ जाण मस्तक न्यो जाए इहदे दो अर्थ हुंदे ने हथ जुड़ जाण का मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना इन्हां हथां ने कुछ नहीं कर सकना इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं ये हथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने इन्हां हथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन आप करता पुरख हो इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना यह हथ बज गए यह हथ तेरे सामने जुड़ गए इन्हां तो कुछ नहीं होना एक तो दोवें हथ बन के सत्कार हुंदा है ना किसी दूसरे का अभिवादन करना हो आदर करना हो भी हथ बनने लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना बल्कि जिसले मत्था टेक देने इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैन आया लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने मत्था टेकने पातशाह इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जा मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता मेरे सोचने ची बड़िया भुलां ने मेरी थां सोचो भी तुसी मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो मैं तुहाडी अरदास च जुड़िया होवां अरदास अरदाश्त बेनती कर रहा हां अर्ज कर रहा हां मैं केवल अरदास च जुड़िया होवां एक ते जुड़ जाए ना बंदा साहिबां ने विश्वास दृढ़ कराए बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है ये वखरी गल है मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है जुड़ना ही औखा है अरदास जुड़ जाना ही औखा है नहीं जुड़े रहिंदा तां इहदे वास्ते भी अरदास करिए बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए तू मैनू अपनी अरदास जोड़ लै अपनी भगती नाल मेरी लिए एकाग्र करन दी समर्था मैनू बख्श फिर मैं अरदास च लगा होवांगा हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा भगती च लगा होवांगा प्रभु का होर कोई काम साथों थोड़िया नहीं पिया वाहिगुरू का कोई काम साडे गोचरा नहीं प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए अरदास करनी आ जावे ना फिर की हुंदा है जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता एक तां हुंदा ना काम हो जाना काम कर लेना काम नबेड़ लेना ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना पहला तां करन तों पहला ही थड़कदा हुंदा घबराया हुंदा डगमगाउंदा है ते जे किते काम हो जाए हंभ के बह जांदा है पसीने पूंजदा सजना मित्रा नूं कहिंदा शुकर करना काम निबड़ गया बंदा केवल नबेड़ सकदा लेकिन सतगुरु जिसले करदा ते नबेड़दा नहीं सतगुरु कार्ज सवारदा वड्डी वड्याई अचरज शोभा उस कार्ज विच शोभा हुंदी मान हुंदा सत्कार हुंदा उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी
ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इस तरह ए मुसलमान तू भी किसी दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम की तरह पिघल जाए।

और दूसरे पास से ब्राह्मण ने उपदेश किया, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारे, जिड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे असी ते ओनू ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जिड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिधर भी जिस पासे भी देखेगा वो जिधर भी देखेगा ओनू ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, ते फिर किदे नाल झगड़ा ते किदे नाल लड़ाई, फिर ते झगड़े खत्म हो जाएंगे। और गुरु घर का उपदेश है, फिर ते इंसान यो कहेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, किदे नाल लड़ा।

परमेश्वर की जोत कह लो, वाहेगुरु का निवास कर लो। पर उदो हैरानगी होंदी है कि जब इंसान इंसानियत नूं भुल के एक दूसरे उत्ते जुलम करता है। ताकत मिले ते ताकत नूं भले पासे लाना चाहिदा है। इंसान नूं इंसान दा घर नहीं साड़ना चाहिदा। इंसान नूं इंसान प्यार करे ता ही इस संसार विच आया उहदा सफल होवेगा।

0: दुर्लभ है।
1: ये बार बार प्राप्त नहीं हो। जिसनु तू ऐवी जान ले,
0: कबीर मानस जन्म दुर्लभ

चार एक अवसर मिले कहने नहीं अवसर आया हाथ गवा दिता बार बार नहीं मिलने इस जन्म अंदर ही प्रभु दी नाल तेरा मिलाप हो सकता है। कबीर साहब का ख्याल बड़ा सुंदर है। कबीर साहब कहें देने कि जीव नू कि जीव नाम जप सिमरन कर इस जन्म नू सफला कर ले लेकिन मनुख अनमोड़ है नहीं जाने लेकिन कहें देने एक दिन

है कबीर साहब लिखे थे कि बल्द बड़ा सुंदर है लेकिन इतनी मार पैण दे बावजूद भी कब नहीं करता है कौन। कहिंदे ने नीज पा के तकिया वेख्या आख्या ते ओही भुलिया जीव है जिन्हों असी उपदेश करदे सां कि नाम जप ते मनुखी जामा सफला होवे लेकिन फिर किसे जूंड दे विच पैगे। कबीर साहब उहदे नाल गल्लां करदे ने कहिंदे ने देख जीव कितना सुंदर तू लगदा सैं लेकिन अज तेरी हालत कैसी चार पाओ दो पाओं की जगह चार पाओं लग गए ने दोए सिंह गुंग मुख मुखो गुंगा हो गए हैं सिर ते दो सिंह लग गए ने तब कैसे गुण गई है हुण तू हरी वाहिगुरु दे गुण नहीं गायन कर सकदा हालत कैसी है उठत बैठत ठेंगा पर है अब कत मूंड लुकई है। जीव हुण क्यों मूंह लुकाउना उठदिया बहिंदिया तेनू चोटां वज रही है कि ए एक जीवली उपदेश है नहीं साडे सारिआं लई जे जीव नाम नहीं जपेगा इसे तरह तेनू भी चोटा ही पैनगियां।

अगही है। जन पग तन का के हो न मानो, तेरी हालत ऐसी क्यों हो गई, तू किसे दा क्या नहीं मने, तू प्रभु भगती नहीं कीती, नाम नहीं जपिया, सिमरन नहीं कीता, नेक कर्म नहीं कीते, तेरा जन्म किवें सफला।

अब भल कहिंदी नहीं जन्म सफला क्यों नहीं होया क्यों किसने मूल नहीं जाने ते जिन्ना चिर मूल ना जाने उन्ना चिर जन्म दा पता नहीं लग सकदा कहिंदी नहीं अवस्था ऐसी आ गई लेकिन प्रभु वल ध्यान अजे नहीं लगया आज ही प्रभु वल अपना ध्यान ला जन्म पाए कच पालो नकीनो ताते अदक डरो।

मेरी मेरी कर दे हैं, जन्म चला गया। अवस्था इतनी बिरद हो गई, कहने अंत समा आ गया, ते अंत समा संगिया साथियां ने पुंडे पा दिता। आखिरी सवास ने कहने ने पुंडे पा दे, पुंडे पा के ना कोल जोत जगा दी। पंडित जी आ गए, मुंह च अमृत जल पाउन लग पे, ते कहने ने ए आखिरी समय ते आया इंसान। हिम्मत करके कहिंदा है, मेरा पुत्र किथे? घर वाली आख्या, महाराज तुहाडे पास सजे हथ बैठे। कहिंदे ने कुछ देर बाद फिर एक आवाज आई, दूसरा पुत्र किथे? आख्या जी तुहाडे खब्बे हथ बैठे। कुछ समा फिर बीते, कहिंदे ने आखरी आख्या, मेरा तीसरा पुत्र किथे? आख्या जी वी तुहाडे चरणा विच बैठे। कहिंदे ने इतनियां गल्लां करदे इसते मुंह आवाज निकली, जे सारे पुत्र मेरे कोल बैठे ने ते दुकान ते कौन गए? कहण तो पास अंत समा भी आया, लेकिन ध्यान प्रभु वल नहीं गया, दुकान वल चला गया। साहब कहिंदे ने ऐसे जन्म का की लाभ है? गुरु अमरदास पातशाह बिरध अवस्था है, ए शरीरा मेरे आ इस जग में आए कहीं।